दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर।

हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण परब कार को तव, मिथ्या मन पर लोभ लुभव, मिथ्या तान नहीं पर उपकार, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की हरजा, साच बिना कह होवत सूचा, ना बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताँ कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताक बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेसा आपना कर, आवत जावत जन्म मर, जिसका अंतर बस निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण भरता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जन, अपना किया आप मन, आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाम स्यानव सगल ते रहत, सब कह जाना आत्म की रहत, जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहे समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी ही स्लोक, काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जेह प्रसाद क्षति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावा, तिसको सिमरत परम गत पावा, जेह प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसा त्याए सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरत तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्याग का तबर लुभावै, जे प्रसाद सुख सेज सुइज, मन आठ पैर ताका जास गावीज, जे प्रसाद तो सबको माना, मुख ताको जास रसन बखाना, जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावा, नानक पथ से तीखर जावा, जे प्रसाद आरु कंचन देही, निबलावो तिस राम स्नेही, जे प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावा हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताक, जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचा, मन साथ साथ सिमर प्रभु उचे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ता की भगत करे, जे प्रसाद आपूखण पहरीज, मन ते सिमरत क्यों आलस कीज, जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ को कबहू नाम बिसारी, जेह प्रसाद बाग मिलख तना, राख प्रोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य सत्यहाई, तिसे तै जो एक अलखा, इहां उहां नानक तेरी रखा, जेह प्रसाद करह पुन बदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सा सास चतारी, जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत रहा, गुर प्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पीखे बिस्माद, जे प्रसाद बोला अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चला, जे प्रसाद संपूर्ण फला, जे प्रसाद परम गद पावा, जे प्रसाद सुख सहज समावै, ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जेह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मन बिसार, जेह प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तो ताको जाप, जेह प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिस जान मन सदा हजूरे, जेह प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता सुराच, जेह प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपा जप सोए, आप जपाए जपाए सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभु सो प्रसन्न बस मन सोए, प्रभु दया ते मातु त

प्रभु की सब को बोला, आप है डोल ना कबहू डोला, सर्व कला कर खेला खेल, मोल ना पाइय गुनह अमोल, सर्व ज्योत में जा की जोत, तार रहे स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद भ्रम का नास, नानक तिन में एहो बिसास, संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म, संत जना सुने सब भजन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख मान, करण करावन हार प्रभ जान, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावा ता करे विस्थार, तिस भावा ता एक अंकार, अनक कला लखी न जाए, जिस भावा तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर गात जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप बरतारा, सर्व नैन आप पेखन हारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जास आप ही सुना, आपन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबका मद अलिप्तो रहा, जो किश कहना सो आपे कहा, आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै त लए समाए, इस ते होए सो नाही बुरा, ओ राह कहा हो कन्है कछु करा, आप भला कर तू तद नीकी, आपे जानै अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए त सोजी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक कहो जान, जो जाना तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओहो तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस सिरदा भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआव, जन का संगचित आवर नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ।

अष्टपदी पूरे गुर का समुपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सौ सौ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उत्तरा चिंद आस अनित्य अगुत रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो सात संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सात संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित्तवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होते उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकर मन लागा हार रंग जय जय शब्द अनहद बाजा सुन सुन अनहद करे प्रभ गाजा प्रगटे गोपाल महांत का माथे नानक उधरे तिनका साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पै सबरेन अमृत नाम सा संग लेन सो प्रसन्न पै गुरदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुनसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिसमन बसे सुहोत निधान सर्व इच्छा ता की पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खाट चल जन सोए नानक जिस प्राप्त होए खेम सांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व

बोलना जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओहकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ ने दया वै ताए, सब थई हुए सहाय, सब थई हुए सहाय। दसवां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, सब थई हुए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारिआं चौहां साहिबजादिआं, 40 मुक्तिआं हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिआ वंड छकिआ, देख चलाई ते गवाही। देख के अणडिठ कीता तिन्हां प्यारिआं, सचिआरिआं जी की नेक कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां संगां संगणियां ने धर्म हित सीस दित्ते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े ता नारियां नल चरवाए। गुरद्वारियां दी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां संग निभाई, भाणे नूं मिठा करके मन्निया। तिन्हां सिरकवाना समूह शहीद सिंघां संगणियां जी की ने कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिआं दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। चेतावे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय। खालसा

सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ बलिहारी गुरे अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार जे सौ चंदा युग में सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदिया गुरबिन कोरे अंधार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। टोडी महला पंजवां हर हर चरण हृदय उरतारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्ज सफल हमारे हर हर चरण हृदय उरतारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्ज सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् बिचारे गुण गावत अतुल।

कीने, तिन का बाहुर कछ ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु साहब जी के मुबारक चरणों के विच सजे दरबार दियां हाजरियां भर रही जुड़मिल बैठी गुरु प्यारी माणयोग साहब संगत। पड़पागे हाँ, जुड़मिल बैठे हाँ गुरु चरणों के विच। धनवाद गुरु सवारे ढाडी जथेदार, आप जी नूं ढाडी वारा गुरु इतिहास सरवण करवा रहे सन सिंह जथे का बहुत बहुत धनवाद। गुरु चरणों के दीवान की समाप्ति की अरदास हुई है। बख्शिश रूप पावन मुख वाक सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह तिन्हां दी मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया टोडी राग विजलाए शब्द आप जी ने हुक्मनामा मुख वाक के रूप में सरवण किया है। बख्शिया होया ये पावन उपदेश साडी सब दी जिंदगी दा जीवन दा आधार बने। गुरु चरणा विच अरदास और इहदे नाल ही सजे हुए दीवान की संपूर्णता है, समाप्ति है। कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा है, जिन्हें प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। उपरंत गुरु का लंगर आई हुई समुची संगत वास्ते तैयार है। सब ने आपो अपनी लोड़ मुताबक छक के जाना। सुखासन की सेवा संगत की आमद को मुख रखद्या होया थोड़ी देर रुक के की जाएगी। तो कड़ा प्रसाद की देख लैण तो उपरंत जल पानी लंगर पानी सब ने छक के जाना। इस तरह रूटीन रोजाना के दीवाना के वो तो वह हाजरियां भर के रौनक वधाउणियां और दर्शन दीदार करके लाहा प्राप्त करते रहना जी। सभना का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सूकै। हर हर नाम पार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहजानंद संतन कै, नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवा। लवै न लागण कौ है कछुवै, जा कौ फिर ए धावै, जा कौ गुर दीनो ए अमृत, तिसी कौ बन आवै। जा को आयो एक रसा, खान पाना नहीं खुदिया, ताके चित ना बसा रहाओ, मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक मूंद जिन पाई, बरना साकू उस्त ता की कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जा को दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरै कमानू मंता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्ब जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, ज्यो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा। बार जाओ गुरे अपने उपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार मैं, जिन सीधा मार्ग दिखाया। हमरे प्राण गोपाल गोबिंद, इहां उहां सर्वथो की, जिसे हमारी चिंद रहाओ। जाके सिमरन सर्ब निधाना, मान महत पत पूरी, नाम लैत कोटि अगनासे, भगत बांछे सब तूरी। सर्ब मनोरथ जे को चाहै, सेवै एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम्पर स्वामी, सिमरत पार पराना। शीतल शांत मां सुख पाया, संत सांग रह ओला, हर धन संचन हर नाम भोजन, ए नानक कीनो चोला। तनासरी महला पंजवा। जे करनी हो मैं शर्मिंदा, एहा कमानी रीत, संत की निंदा, साकत की पूजा, ऐसी दृढ़ी विपरीत। माया मोह भूलो अवरै हीत, हर चंदौरी बन हर पात्रे, एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देह को, सुख गर्दव भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुचियावत, बिखै ठगौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस जुग में पवित पुनीत, जात कारथ जन्म पदार्थ, काच बादरै जीत। जन्म जन्म के किल विख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुख ते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा। पानी पखा पीसो संत आगै, गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारै, ए विश्राम निद पाई।

विचारा। वस्त पराई कौठ रोवै, कर्म धर्म सगलाई खोवै, हुक्म न बूझै आवण जाने, पाप करै ता पछू ताणे। जोत दुपावै सो परवान, तेरे भाणे नू कुरबान, नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रमेरा। तनासरी महला पंजवां, मोहे मसकीन प्रभ नाम आधार, खाटण कौ हर हर रोजगार, संचन कौ

रखे। संसार सागर में जलन ना दीने, किने ना दुतार पाख है। जिनकै मन साचा विश्वास, पेख पेख स्वामी की शोभा, आनंद सदा उलास रहाओ। चरण शरण पूर्ण परमेश्वर, अंतरजामी साखियो। जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकुर राखियो। तनासरी महला पंजवा, जहां जहां पेखो ता हजूर, दूर कतू ना जाई। रव रहिया सरबत्र मैं, मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछुड़ै, सो संगी गणियै। बिनस जाए जो निमख मैं, सो अल्प सुख भनियै रहाउ। प्रतपालै अप्याउ दे, कछ ऊण न होई। सा सा संभालता मेरा प्रभ सोई। अषाल अषेद अपार प्रभ, ऊंचा जाका रूप। जप जप करें आनंद जन, आचर्ज अनूप। सा मत देह दयाल प्रभ, जित तुम्हें अराधा। नानक मंगै दान प्रभ, रेन पग साधा। तनासरी महला पंजवा, जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ, सहज धुन निहचल राज कमाओ। तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे। अपदा पई बतीत रहाओ, प्रगट कीने प्रभ करने हारे। नासन भाजन थाके, घर मंगल वाजै नित वाजे। अपने खसम निवाजे, अस्थिर रहो डोलो मत कब हूं। गुर कै बचन आधार, जय जयकार सगल ऊ मंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई। अचरज किया करने हारै, नानक सच वड्याई। तनासरी महला पंजवा, घर छेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सुनो संत प्यारे, बिनो हमारे जियो। हर बिन मुक्त न काहू जियो, रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारण। तरन हर अवर जंजाल, तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा, ए उपदेश मोको गुरदीना जियो। तिस्यो ना लाइया हीत, जाको किश ना ही बीत। अंत की बार ओ संग न चालै, मन तन तू आराध हर के। प्रीतम साध जाके संग, तेरे बंधन तू छूटै। गहो पार ब्रह्म शरण हिरदय, कमल चरण। गहो पार ब्रह्म शरण हिरदय, कमल चरण। अवर आस कश पटल ना कीजै, सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा कीजै। तनासरी महला पंजवा, मेरे लाल भरो रे भलो हर मंगना। देखो पसार नैन, सुनो साधु के बैन। प्राण पात चित राख, सगल है मरना रहाओ। चंदन चुआ रस भू कर, तनेक बिखिया बिकार। देख सगल है फीके, एक है गोविंद के नाम नीको। कहत है साध जन, तन तन आपन थाप्यो। हर जापना निमख जाप्यो, अर्थ द्रब देख कश संग ना ही चलना। जां कोरे कर्म पला, तिन उठ गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावै, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना। तनासरी महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह महा, पौजल तारे रहाओ। सास सास निमख निमख, दिन सरैन चितारे। साध संग जापन संग, मन निधान तारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोबिंद बिचारे। साध जना की रे नानक, मंगल सुख सुधारे। तनासरी महला पंजवा, कर अठवा दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सा सा संभाले ए लोक प्रलोक, संग सहाई। जात

जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पा ना साके जाले रहाउ निरतन को तन अंदले को टेक मात दूध जैसी बाली सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा भय कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नाव निध रिद सिद्ध हर लागे रही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहे अश्रभ ठाई रहाओ ता को कोई न पहुंचन हारा जा कै अंग गुसाई जम की त्रास मिटै जि सिमरत नानक नाम त्याई तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भै भूमवंत अभिमानी राजा जानै सगल राज हमरा त्यों हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट समारै जैसा बेत तैसा हुए वरतै अपना बल नहीं हारै रहाउ आन त्याग भय एक आसर शरण शरण कर आए संतन गुरु भय मन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जा को हर रंग लागू इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइय आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे हिरै संग पुनीता देही जन की धूर देहु कृपा निध नान कै सुख एही तनासरी महला पंजवा जतन करै मानुक डहकावै ओ अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै भेख करै निर्बानै जानत दूर तुमै प्रभ नेर जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाउ जब लग टुटै नाही मन भरमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई

नाम दृढ़ावै नाम जपावै तां की जुग मैं धर्मा। जन को नाम वडाई शोभ नामो गत नामो पत जन की माने। जो जो होग रहाओ नाम धन जिस जन कै पालै सोई पूरा शाह। नाम बिहारा नानक आधारा नामा प्राप्त लाहार। तनासरी महला पंजवा नेत्र पुनीत भय दर्श पेखे माथे परों रवाला। नेत्र पुनीत भय दर्श पेखे माथे परों रवाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के मुरे हृदय बसु गोपाल। तुमको राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ। हो प्रभु कृपाल रहाओ मानंद मंगल रूप। तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उक्त खिलावै भोजन अपनी उक्त खेलावै। सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल ज्यों राखै महतारी बार को तैसे ही प्रभ पाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत कृपाल दयाल दमुदर काम क्रोध बिख जारे। राजमाल जोबन तन जीरा इन ऊपर लै बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज नंद मंगल सहत भवनिध पारे तारे। रहाओ तन सुथान धाने ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसन कत हूं जात। सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंदा इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी टेक मने साधारी। साकत की अवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार। मूसा टू गवावत काम नहीं गवारी। रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ये बंधन छुटकारी। बूटत अंध नानक प्रभु काढ़त तो साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ जिसका साथ तिन ही रख लिया पूर्ण प्रभु की पाती। मेल लियो आपे सुखदाता नानक हर राखी पाती। तनासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरै प्रगट प्रताप तुम्हारा। जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी ओर हर नीत मुरार सहाए। हो दास को कर गह उदरों मीत। रहाओ सुन बे

गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यंत प्रभ जापण। नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थूक, मानुख को जात जाचत श्रम पाइये, प्रभ कै सिमरन मुख रहाओ। कोखे मोन जन सिमरत पुराना, वेद पुकारे कूख, कृपा सिंध सेव सच पाइये, दुमै सुहेले लोक, आन चार बिहार है जीते, बिन हर सिमरन फूक। नानक जन्म मरण पै काटे, मिल साधु बिन से सूक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा बुझै हर कै नाम, महासंतोख हुवै गुरबचनी, प्रभ स्यों लागै पूर्ण ध्यान रहाओ। महाकलोल बुझै माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल, अपना नाम देह जप जीवा, पूर्ण होए दास की काल। सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां, कीर्तन जप नाम, जिसके कर्म लिखिया तुर करतै, नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवा, जन की कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन ना पावन मूले, उड़ गए बेकार रहाओ। जहां जहां देखो तहां तहां स्वामी, कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की, होए गया तत शार, करनहार रखवाला हुआ, जां का अंत न पारा वार, नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवा, कर नामा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारू कृपा कर तारू, पुजागै कूबते काड लेवो रहाओ। क्राम काम क्रोध कर अंध माया के बंद, काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दुखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना यान न राखण हारा, नाम सिमरावो शरण सूरे। पतत उदारना जी जंत तारना, वेद उचार नहीं अंत पायो, गुणा सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वशल नानक गायो। तनासरी महला पंजवा, हलत सुख पलत सुख, नित सुख सिमरनो नाम, गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणै पाप चराणै, साध संग मिल मुआ जीजै, रहाउ राज जोबन बिसरंत हर माया, महा दुख ए महात कहै, आस प्यास रमण हर कीर्तन, ए पदार्थ भागवंत लहै, शरण समरथ एकांते अगोचरा, पतत उदाहरण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवा, कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय, रहाओ वडे भाग भेटे गुरुदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा, चरण कमल जा का मन रापै, सो गगन तिस जन ना ब्यापै, सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे, पर धन दो किश पाप न फेड़े, जम जंदार न आवै नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई। तनासरी महला पंजवा, तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया, जीवना हर जीवना जीवन, हर जप साध संग रहाओ, अनक प्रकारी वस्त्र उड़ाए, अनदिन कीर्तन हर गुण गाए, हस्ती रथ आस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी, मन तन अंतर चरण ते आया, हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवा, गुर के चरण जी का निस्तारा,
समुंद सागर जिन खिन मैं तारा रहाओ, कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर का नाम त्याया, बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी, तनाश्री महला पंजवा, कितै प्रकार न टूटो प्रीत, दास तेरे की निर्मल रीत, रहाओ जी प्राण मन धन ते प्यारा, हौ मैं बंद हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो ने, नानक की बेनंती ए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनाश्री महला नामा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, रहाओ पोप मत ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई, रह पार पीतर एको जानो।

तटा मेघा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा वरपंडा अंड जेर जोत पजा खाणी से तजा सुमत जाने नानका सरम मेरा जनता नानक जन तो पाए कै संभाले सभना जिन करता करना किया चिंता भी करणीता।

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड वैसनहा कूड सोईना कूड रूपा कूड पैननहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपा पार कूड मिया कूड बीबी खप होए कार कूड कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड मिठा कूड माख्यों कूड डुबै पूर नानक।

0: सूत जत गंडी सत वट एउ जने उजी काहत पांडे कत नाए टुटे ना मन लगे नाए जले ना जाए तन सुमान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मूल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पिया वे तग गया महला पहला।
1: लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तक पाओ कतिये बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाई होए पुराना सुटिए पी फिर पाई होर नानक तक न टुटाई जे तक होए जोर महला पहला।
0: नाए मनिए पतु पजै सलाई ससूत दरगे अंदर पाई तग ना टूट सपूत महला पहला।
1: तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवे निदाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जीवा तग ना अखी वितगा पे वते वड़तागे वरकते ले पहाड़ करे वे आहो कड़का गल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना हो।

0: पहलाव, गौ ब्राह्मण को करलावे गो बर्तन ना जाए। तोती टिका तय जप वाले तान वाले शाखाए, आंतर पूजा पढ़े कते संजम तुरका पाए। छूडी ले पखंडा नाम लिए जाए तिरंगा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवाज श्री बगान तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पिया वे उही साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। मथे टिका तेड़ धोती कखाई, हाथ श्री जगत कसाई। नील वस्त्र पैर हुए प्रवान, मलेश धानले पूज है पुराण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना। देखे चौका कटी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार। मत पिटे वे मत पिटे हो अन असर डा फिटे, तन फिटे वेड़ करे।

कन्मोहे कन्मोहे पितरी दे आगे वस्याणी है पितरी जोर करे वडिये हाथ दुलाल के मुसफिये करे नानक गए सू मिले जे।

नानक साच कह बेनंती, मन मांजै सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। किरत कर्म के विछुड़े, कर कृपा मेलो राम। तेण दुदैते बाहरी, किते न आवै काम। सतनाम वाहिगुरु जी। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधियास। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधियास। दुइये पाए विगुचिये, गल पई इस जम की फास। जेहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखियास। रैण विहाणी पछो ताणी, उठ चली गई निराश। जिनको साधु भेटियै, सो दरगा होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत का धन्यवाद, शुकराना। अकाल पुरख वाहिगुरु का। पावन बाणी दे नाल आप संगत ने सांझ बनाई है। अज आषाढ़ दे महीने की परमता हुई है। सतगुरु कृपा करन, पावन बाणी का उपदेश साडे सारयां दे जीवन का आसरा बने। आओ अगलेरे समय लई सतगुरु दे अज दे मुख वाक दी विचार दे नाल जुड़िए। 9:20 दे उत्ते आषाढ़ दा जिहड़ा उपदेश गुरु अर्जन साहब दा है, तिस दी विचार आप जी दे नाल सांझी कीती जावेगी। सो हुण समा है पावन मुख वाक दी विचार दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाना जिन्ना पास।

तेरे दर्शन हुए प्यास, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास, असाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं।

जहाँ जहाँ पेखो ता हजूर, दूर कतो ना जाई। राव रहया सर्वत्र मैं, मन सदा त्याई। जहाँ जहाँ पेखो ता हजूर, दूर कतो ना जाई। राव रहया सर्वत्र मैं, मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछड़ा, सो संगी गनिया। बिन सजाए जो निमख मह, सो आलप।

सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई, अशल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप।

अंत गया पछतावई। बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलतर माया धोया। दूजे भाई दुख हुई मनमुख जम जोहया जियो। कर कृपा लिहो मिलाई बैल हर पाया जियो। सदा रह कर जोड़ प्रमन भाया जियो। प्रमन भावे त हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जलत रह दिन राती सहजे नाम ते आया। नामो नाम मिली वडियाई नानक नामन भावई। कर कृपा लिहो मिलाए मैल हर पावे जियो। तनासरी महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु दीन दयाल जे संग हर गावी है जियो। अमृत हर का नाम साध संगरा भी है जियो। पज संग साधु एकारा दू जन्म मरण दुख ना सहे। तुर करम लिखिया साध सिखिया कटी जम की फांसे। पै भरम नाठे छुटी गांठे जम पंथ मूल ना आवी है। बिनवंत नानक धार कृपा सदा हर गुण गावी है। नितरिया तर एक नाम निरंजनो जियो। तू दाता दातार सर्व दुख भंजनो जियो। दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया। संसार सागर महा बिखड़ा पल एक माहे तराया। पूरहया सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो। बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै भंजनो। आप लिए लड़ लाए कृपा धारिया जियो। मोय निर्गुण नीचा नाथ प्रभ अगमा पारिया जियो। दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच था पनहानिया। जी जन सब वस तेरे सगल तेरी सारिया। आप करता भुगता आप सगल बिचारिया। बिनवंत नान गुण गाय जीवा हर जप जपो बनवारिया। तेरा दरसा पार नाम अमोल नहीं जियो। नित जपे तेरे दास पुरख अतोल नहीं जियो। संत रसन बूठा आव तुठा हर से ही मातिया। गुर चन लागे महाभागे सदा आनंदन जागया। सदा सदा सिमर तब स्वामी सास सास गुण बोलई। बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई। राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम ना जाना। संत संगत राम हृदय वसाई रहाओ। हनुमान सर गुरुड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कवला नहीं जाना। कह कबीर सो पर मैं नाई पग लग राम रह सर नाही। दिन ते पहर पैर ते करिया आव कटै तन शीजै। काल अहेरी फिरै बदक ज्यों कहो कमन बिद की जै।

का का रहाउ। जब लग जोत काया में बरत आपा पशु न बुझे, लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी परों एक ही सरना। जो जन पाओ भगत कस जाने ताको अचरज कहो, जो जल जल में पैस न निकसै तो ढौरो मिलियो जो लाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पूरा, जो तन कांसी तजै कबीरा मुरमैये कहा न हो रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई भरम न भूलो कोई, क्या कांसी क्या उखर मगहर राम हृदय ज्यो होई। इंद्र लोक शिव लोक है जैब उसे तबे कर बहर ऐबो, क्या मांगो कि थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाओ। सोभा राज बिबै बंडियाई, अंत ना काहू संग सहाय। पुत्र कलतर लक्ष्मी माया, इनते कहो कवने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन धन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन मन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत दे गरे संपत सुखदाई, इनमें काश नाही तेरो काल अवध जाई। अजामल गज गन का पदत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सुकर कुकर जो

चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सवन बानी सुजसपूर राखो, मन सो मधक करो चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोविंद सिंह।

हर हर महापुरख गुर मिलो, गुर नानक नाम सुख होई राम। जय श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपा, गुरमुख नाम सदा लैला। हर हर हर हर भगत रड़ाओ, हर हर नाम महाराम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सत्संग महाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा। हर हर कृपा धार गुर मिलो, गुर मिले हर ओ महाराम। हर कीरत जस अगमा था, खिन खिन राम नाम गवाह। मोको धार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगतो महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाह, मन राम नाम पीना लै लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगतो महाराम। हर हर गुण गोबिंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लै लाहा। गुरमत पंच दूत बस आवे, मन तन हर ओ महाराम। ना

राम महाराम। जप जगदीश जपो मन माहा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। धन धन वड्डे ठाकुर प्रभ मेरी, जप नानक भगत महाराम। जय श्री महला चौथा। आप

मुख उजल संग संतन कह पाई। जैत श्री महला पंजवा घर तीजा दो बदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। देहो संदेसरो कहियो प्रै कहियो विषम भई मैं बो बिद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो वर्ण दिस चिन्ह लखिए सुहागन शांत बुझहियो। सर्व निवासी घटकड़ वासी लेप नहीं अलपहियो। नानक कह सुनो रे लोगा संतरसन को बसहियो। जय श्री महला पंजवा धीरो सुनो धीरो प्रभ को रहाओ। जी प्राण मन तम सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो। बेसुमार बेअंत वडदाता मन है गहीरो पेख प्रभ को। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जा प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहूं चूरो बुझ प्रभ को। जय श्री महला पंजवा लुड़िंदड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावो निके घट घट तिसे बसेरा रहाओ। सुख आराधन दुख आराधन बिसर न काहू बेरा नाम जबत कोट सूर उजारा बिन से परम अंधेरा। थान थनंतर सब नी जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बोहर न हुई है फेरा। जय श्री महला पंजवा घर चौथा दोबदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आमे सुख पायो गुर आग तजी सियानब चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोह मोहियो तो शरण परयो गुरु भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक जो संत भेटे वडभाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जय श्री महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जी उमया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत गहयो चरण आसरा। नाव रूप भयो साध संग भवने दार पर अप्यो पियो गद थियो परमा को नानक अजर जरा। जैत श्री महला पंजवा जाको भय गोविंद सहाय। सुख सहज आनंद सगल स्यों वाक्यों ब्याद न काई रहाओ। दिसै सब संग रह अलेपा

था तिस भिन्न नहीं कोई, खंड ब्रह्मंड पाताल देव रवैया सबल होई। जिस आ बुझाए सुबुझसी निर्मल जन सोई सलोक, रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनंग, सास सास सिमरंत नानक महा अगन्ना विनाशनंग। मुख तलै पैर उपरे वसंदो को हथड़ै थाई, नानक सो धनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए पौड़ी। रक्त बिंद कर निमिया अगन उदर मझार, उर्दमो को चील बिकल नर घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार, बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ विसरत सुख दे नाई जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण, खनन कल कलेसै प्रभ सिमर नानक नै दूरण। हव रंग माण जिस संग तै सिम लाइय नेहो, सो सो बिंद न विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो बोड़ी। जियो प्राण तन धन दिया दीने रस भोग, गृह मंदिर रथ अस दिए रज भले संजोग। सोत बनता साजन सेवक दे प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन मन हरिया लै जाही बिजोग। साध संग हर गुण रमो बिन से सब रोग। सलोक कुटंब जतन करण माया अनेक उदम है, हर भगत भावहीन नानक प्रभ विसरत दे प्रित तै। तुटड़िया सप्रीत जो लाई बियन स्यों, नानक सची री साई से तीरतया पौड़ी। जिस विसर तन भसम होए कहते सब प्रेत, खिन गृह में बस न देवई जिन स्यों सोई हेत। कार अनर्थ दर्भ संचया सो कार्ज केत, जैसा भी जैसो लुणे कर्म एक हेत। अकिरत कणा हर विसरिया जोनी परमेत, सलोक कोड़ दान इस नानक अनक सोधन पवित्रता। उचरंत नानक हर हर रसना सर पा विमुचते, ईंदन के तो मुँह घना भोरी दितीम पाए। मन वसुंदड़ो सासो नानक हब्बे डुखड़े उलाए पौड़ी। कोट अगा सब नास हो सिमरत हर नाओ, मन चिंदे फल पाइए हर के गुण गाओ। जन्म मरण भय कटिए नेचल सच थाओ, पूर्व होवे लिखिया हर चरण समाओ। कर कृपा प्रभ राख लियो नानक बल जाओ। सलोक ग्रह रचना अपारंग मन बिलास स्वादंग रस है, कदाच नै सिमरंत नानक ते जंत बिष्टा किरम है। मुच अडंबर हब कै मंझ मोहब्बत नेहे, सो साई जै विसरै नानक सो तन खे पौड़ी। सुंदर से जा नेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रे सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा किश नाही विसूरे, सो प्रभ चित न आवे विष्टा के कीरे। बिन हर नाम न शांत होए कित बिद मन धीरे। सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बिरागी दै दिसै, त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संगम है। मन साई मुख उचरा वत्ता हब्बे लो, नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी। बस्ता टूटी झूंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पत न आदरो उदयान परमिना। मित्र न इठतन रूपहीन किछ साख न सिन्ना, राजा सगली सृटका हर ना मन भिन्ना। तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना। सलोक अनक लीला राज रस रूपं, शतर चमर तख्त आसनंग। रचंत मूड अज्ञान अंधै नानक सुपन मनोरथ माया। सुपने हवरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो, नानक ना विहूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी। सुपने सेती चित मूर्ख लाया, बिसरे राजरस भोग जागत बखलाया। आर जा गई विहाई धंधै धाया, पूर्ण भय न काम मोहया माया। क्या विचारा जंत जा आ भुलाया। सलोक बसंत स्वर्ग लोक है जिते पृथ्वी नवखंडन, विसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण। कौत कोड़ तमासिया चेतन आवस नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जानिया। काम क्रोध अहंकार फिरे दवानिया, सिर लगा जम डंड ता पछतानिया। बिन पूरे गुरदेव फिरे शैतानिया। सलोक
ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ ਧਨ ਕਪਟੰਗ ਕੁਲ ਗਰਬਤ ਹੈ ਸਚੰਤ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਲੰਗ ਛਿਦਰੰਗ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੇ ਪਿਖੰਦੜੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਤੁਮਾਂ ਦਿਸਮ ਸੋਣਾ ਅੱਡ ਨਾ ਲਹੰਦੜੋ ਮੁੱਲ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨਾ ਜੋ ਲਈ ਮਾਇਆ ਪੌੜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਏ ਤਿਸਕਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਯਤਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵੰਜੀਏ ਹਰ ਬਿਸਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੈ ਨਾਮ ਨਰੰਜੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਰਕ ਸਮੰਜੀਏ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਪਉ ਬੰਜੀਏ ਸਲੋਕ ਨੱਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਸ਼ਟੰਗ ਨੱਚ ਭੋਗ ਰਸ ਮਿਸ਼ਟੰਗ ਨੱਚ ਮਿਸ਼ਟੰਗ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਮਿਸ਼ਟੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਿਸ਼ਟੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨੰਗ ਲਗੜਾ ਸੋ ਨੇਹੋ ਮਨ ਮੰਜਾ ਹੋਰਤਿਆ ਵਿੰਦੜੋ ਸਥੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਠੜਾ ਸੋ ਦਣੀ ਪੌੜੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ ਭਗਤਨ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਆਨ ਸਵਾਦ ਸਫੀ ਕਿਆ ਕਰ ਨਿਰਨੋ ਡੀਠਾ ਅਗਿਆਨ ਪਰਮ ਦੁ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਜਿਉ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਝੂਠਾ ਸਲੋਕ ਤਿਆਗਤ ਜਲੰਗ ਨੈ ਜੀਵ ਮੀਨੰਗ ਨੈ ਤਿਆਗ ਚਾਤਰਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲੈ ਬਾਣ ਵਿਧੰਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੰਗ ਅਲ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਵਾਸਨੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੰਤ ਸੰਤੈ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨਾ ਰੁਚਦੇ ਮੁਖ ਡਿਖਾਓ ਪਲਕ ਛੱਡ ਆਨ ਨਾ ਡੇਉ ਚਿਤ ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ ਤਿਸ ਧਣੀ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾਂ ਮਿਤ ਪੌੜੀ ਜੋ